एक ओंकार सत गुर प्रसाद सत्संगियो एक ओंकार परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम सत है, मिलता किमें गुरु की कृपा दृष्टि दे सदका। ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं

कोई छे छे कर्म सत्सत कर्म साधु ही साधु खलोते है, पिछे पिछे सेवक है साधु अगे अगे है। ते बाबा जी का जिहड़ा भगवान है वह उन्हां दा चुकिया होया है। जिस वेले उस समय याद आता उस वेले ऐं लगता है भी किन्नी धरती हरियाबली है, से संत पे हरियाबले जिन्ना मेरा सतगुर देखा जाए। अखा उन्होंने दे विच भी जल जिहड़ा सी वह वगदा सी। भागा वाले उस वेले संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज उन्होंने कहा भी कहना तो सौखा भाई रोवो ना, ये तो अपने घर नूं चलिया पर रोण बंद नहीं हुंदा, मैं की करा। किसी का भी उस वेले जिहड़ा सी मन ये नहीं सी कहिंदा भी मैं ना रोवां, जी करदा सी उची उची भुवां मारां। किहो जिहा प्यार दा समां सी, ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाउंदे हन।

0: अब की बार बख्श बंदे को बाहर ना पग मिले। बहुत दुख उठा ले जमन मरण, बहुत तकलीफा चल रही हैं। इस आत्मा नू अपने घर विच बुला लो, इस भटकदी भरम दी आत्मा नू अपने दर ते प्रवान कर लो, मुड़के जन्म ना होवे। बोलो
1: सतनाम,
0: जमन मरण तो मुक्त कर दियो। ये सारे पुआड़े जमन मरण करके ही सबनों वड्डा दुख जमन ते मरण दा ही है। बिच बचाले हो दुख तकलीफा कितनिया पाउंदा है, बार बार जमी जांदा, बार बार मरी जांदा है, कितनिया तकलीफा पाउंदा है। ते सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ते, मेरा जमन मरण कट दियो। हुण जहांगीर आम बंदा क्या जमना मरना कट देवेगा, वो तो खुद जमन मरण दे गेट च पिया होया है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: वो कहिंदा पैसा लै लो, माया लै लै, पिंड लै लै। सिख कहिंदा महाराज ने झूठिया चीजा दे विच मेरा तो जन्म यह मौलिक जन्म निकल जाएगा। मैनू महाराज परमावो ना, मैनू ये झूठिया चीजा दे विच ना रखो, मैनू सच्ची दात बख्शिश करो। बोलो हुण ये गुरु तो बिना कौन करेगा, जमना मरना कौन कट देवेगा, मुक्त कौन कर सकता है, जमा तो कौन बचा सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुक्ति दा दाता कौन है? हुण जहांगीर मुक्ति दे सकता है, किते नाम दी दात वो दे सकता है? नहीं। महाराज कहंदे हन जिस वस्तु को लैन तू आया राम नाम।

केवल नाम जपन लई शानु प्राप्त होया। निरंकार ने 84 लाख जून संसार ते साजना की थी। 84 लाख तो एक काट सी। निरंकार दा मन पसीजिया नहीं ते जदों मनुख दी साजना कीती ता निरंकार प्रसन्न हो गए। अपना रूप वेख्या मनुख दे विच, अपना स्वरूप दिता मनुख नू ते 84 लाख जून दा बादशाह बना दिता। इस ऊपर तेरी शिकदारी अवर जून तेरी पनहारी। ए मनुख सारियां जूना होर तेरे पानी भरन वालियां तेरी सेवा करन वालियां होनगियां। पर वेखी मनुख होके मनुखां वाला काम करी। ऐसा ना होवे तेरियां करतूतां पशु वालियां होन, होवे तू मनुख। ऐसा ना होवे निरंकार दे बख्शे होए अमोलक हीरियां लालां तो भी महंगे श्वास, तू कौडियां दे वटे जाया कर दे में। ऐसा ना होवे जिस वाहिगुरु ने तैनू अरोग कंचन वर्गा शरीर दिता, तू उसनू सेवा सिमरन परपकार करन दी बजाए विकारां विच पापां विच ला के गाल देवें। हजूर बख्शिश कर दें भाई, इस शरीर रूपी धरती दे उते मन नू हाली बना, करनी नू किरसानी बना, नाम दा बीज वो संतोख दा सुहागा रख। जो वाहिगुरु ने दे दिता है सबर संतोख कर, लख लख शुक्र कर उसका। जो कुछ वाहिगुरु ने दिता है अरदास कर, हे निरंकार मैं इस योग नहीं, जितना तू दे दिता है जितनिया रहमतां तू कीतियां हन, जे करोड़ जन्म पाके भी तेरा शुकराना करा ता भी नहीं कर सकता। हजूर कहंदे ने इस शुभ कर्मा रूपी खेती विच बीज वो नाम दा ते फिर बड़ी प्रफुल्लत होवेगी। ऐ मनुख फिर निम्रता दी वाड़ रखी, किते भले कर्म करदिया होया तेरे मन विच हंकार ना आ जा। जिस खेती नू वाड़ ना होवे उस खेती नू पशु जानवर उजाड़ जांदे हन, किते तेरी भी शुभ कर्मा रूपी खेती उजड़ ना जावे। इसलिए निम्रता विच रही, सब कुछ करदिया होया भी निरंकार अगे अपने गुनाह बख्शावे। अमृत वेले दे जागण दी दात मंगी, नाम दी दात मंगी गुरु कोलो, हर वेले उदे निर्मल पाव विच रही, क्योंकि यही एक रुत है, यही एक जून है जिदे विच तू जप

उनों युगों का धर्म है, कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नू विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा, घोड़ियां दा, हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे। आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन, ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रसना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे आं यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउंगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजा है, ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, कित्थे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन। भाई लहना जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके, पलक सोए चुके। ते भाई लैणा जी खड़े हो गए, सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ये ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सन के जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तू अपनी राह तू चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आज रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इन्हां अखरां।

हे गुरु अर्जन देव पातशाह, मैं कदे कोई जान बुझ के ऐसा कम नहीं कीता, क्योंकि आप दा बचन है उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। आप दा बचन है जिथे सिमरन शास्त्र राज सिमरन करना, उथे अपना विहार भी शुद्ध करना, क्योंकि जिस मनुख दा विहार सच्चाई दे ऊपर है उस दा परमार्थ आपे ही शुद्ध हो जांदा है। जिदा विहार झूठा है वो जितना मर्जी है सिमरन कर लवे, वो सिमरन प्रफुल्लित नहीं होंदा। उच्चारण करो श्री हजूर कहंदे ने सत व्यवहार भी करना, जे तेरा विहार बिगड़ गया तो परमार्थ कदे नहीं सौर सकता। गरीब निवाज, मैं कदे जान बुझ के तो ऐसी गलती नहीं की, हुण मेरी पैज तू रखनी है। किसे दा कोई आसरा, किसे दा कोई आसरा, पर मेरा तो सबो कुछ तुयो है। जां अरदास करके भाई पतंग ने उस बलदे तेल विच हथ पाया, जाके पैसे कढ ले आया, बाह नूं कोई लाज तक नहीं लगी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हुण जमाल खान दी वारी आई, ओ भी करन लगा याद पर बाह सड़ गई। जदों हथ पाण लगा तां हथ जल गया, बाह की पानी सी। उसे वेले उसनू तां दवाई दे अधीन उदा इलाज करन वास्ते भेज दिता। ते इधर भाई पतंग जी मन विच बड़ा खोब है, भाई मेरी वजह करके किसे नू दुख पहुंचे, ये क्यों पहुंचे। हे वाहिगुरु, जे इदी अमानत मेरे पास है तो कृपा कर मैं इदा बोझ उतार सकूं। ते जां कोई गाहक सौदा लैण लई आया ना, भाई फलानी चीज चाहीदी है, ते ज्यो ओ कुजियां खोलन लगे ना, ओ सौदे नूं लभण लगे, ते विचों भाई जमाल दी दित्ती होई ओ थैली लभ पई। उचारण करो श्री वाहिगुरु। भाई साहब नूं भुल गया सी, चट थैली लैके 500 मोहरां हन, जमाल खान दे घर गए। भाई तेरी अमानत सानू मिल गई है, आ किते उरे परे रखी गई सी, गाक आया सौदा लभन लगे ते लभ गई, आ तेरी अमानत है लै लै। ते जमाल खान कहिंदा, मैं राज दरबार विचों भी हर चुकिया, उंज भी मैं झूठा पै चुकिया, हुण ए अमानत मैं नहीं लैनी। ते भाई साहब कहण लगे, मैनू गुरु दा हुक्म नहीं, मैं किसे दा भी पैसा अपने पास नहीं रख सकदा। हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर होमा तां भरे जां मुरदार ना खाए। ए मुरदार है किसे दी अमानत विच ख्यानत करके खाई जाना। अख्या मैनू ऐसे गुरु ने ए शब्द सिखाए नहीं हन, ए कम सिखाया नहीं। उचारण करो श्री। ता फिर मैं तेरे गुरु दे दीदार करना चाहना, ते ओदे कोलों कोई सवाल पूछना चाहना, जे ओ देवेगा तो मैं अपनी अमानत मोड़ लवांगा। भाई जमाल नूं नाल लैके भाई पतंग जी गए। गुरु अर्जन देव पातशाह दीवान विच सशोभित हन, मत्था टेकिया, भाई पतंग दे नैन कटोरी भर आए, हजूर दे चरना तो मस्तक नहीं चुकदे। साहब जी ने दोहां हत्थां नाल, भाई पतंग तू गुरु नानक दे दर ते परवान होए, असी सब समझदे हां, तेरा कोई कसूर नहीं। उचारण करो श्री वाहिगुरु। भाई पतंग ते बेअंत बख्शिशां कीतियां, हुण जमाल खान ने भी हाथ जोड़े ते आख्या, महाराज मैं भी एक प्रश्न लैके आया कि सच्चा मैं भी सां ते सच्चा ए भी सी, पर इसदा हाथ नहीं जलिया, मेरा हाथ जल गया, एदा की कारण है। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, भाई इसने मन करके कोई कसूर नहीं कीता, भुलण अंदर सब को, जेड़ी अचिंत ही भुल हुंदी है ओ भुल नहीं होंदी, जेड़ी जान बुझ के कीती जाए ओ भुल गिनी जांदी है। फिर तू जदों इसने जदों अरदास कीती है ता एक मन होके
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਆਖਿਆ ਪਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਬਈ, ਏਕ ਆਸ਼ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਭਰਮ ਭਉ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜਮਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਆ ਫੁੱਲ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਧਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ? ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

पावन पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, उहदा जिक्र कर रहे हैं। कहिंदे ने कि बंदगी करदा हां उहदी महान कृपा नाल, सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी दाता हो के लोग इन मथे टेकते ने। हैं ए क्यों? बंदे दा सुभा है, बंदा किसे दी वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करदा, किसे दी प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करदा। कबीर जी नूं ए सजा दिती गई कि इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पाके गंगा विच छुड़ दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझते ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया उहदा जिक्र कीता है। पर कहिंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने उहदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। आओ।

राज साज हम पर जब आयो, यथा सकत तब तर्म चलायो। कलगीधर पातशाह बड़ा सुंदर लिख दे ने, राज साध हम पर जब आयो, ए राज पाठ दी जिम्मेवारी जद मेनू मिली, यथा सकत तब धर्म चलायो। जिन्ना भी हो सकया मैं इसनू अगे तोरन दी कोशिश कीती।

शुद्ध लई ए पौटे दी धरती जो राजा मेदिनी प्रकाश दी सी। राजा मेदिनी प्रकाश ने सतगुरु नु अपनी मदद ले याद कीता। जब सतगुरु ने आके सहायता कीती ते मेदिनी प्रकाश कहन लगा, साहब जी एक याद अपनी तुसी भी इत्थे बनाओ। ते सतगुरु ने जमुना दा तट सुंदर वेख के अपना सज्जा चरण कोड़े तो तले लाया, उस धरती दा नाम श्री पौंटा साहिब पै गया। कहिंदे ने सतगुरु इत्थे विराजमान होए।

इन्हें बड़े ही बाण चलाए, बड़े सैन किसने मार दिते, मैदान जंग अंदर लटा दिते। क्यों? रसंगरुदंग राचे महालोभ माचे, क्योंकि गुस्से दे विच रचिया सी, लोहे दी तरह लाल होया, जंग कर रहा सी। हाने शस्त्र तारी

मुदकर सो साहन पजो संग लेके सुसारी सुपाहन। सतगुरु कहते ये अपने आप नू बड़े सूरबीर अखवांदे सन, लेकिन मेरे सूरबीरां दे सामने इन्हां दे पासो एक तीर भी ना चलिया, इत्थों तक के अपनी सेना दी जान बचांदे जंग विचों नठ गए।

आपकी विसाखी का पुरब मना रहे हो, अरगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन, ते शब्द भी उन्हां दा ही है कलगीधर पातशाह जी का। दोवें शब्द राग विच दास पढ़ेगा, दोवें शब्द कलगीधर पातशाह जी देने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा, क्योंकि आप जी नूं कई बारी समझ नहीं आवेगी कई तुका दी। अस्थाई दी तुक है, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाए अभिमान, साध के संग प्रगटाए सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु महे समानी। साध के संग अगोचर मिलाए, साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सबकी देन, साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस से नहीं बैर, साध के संग न भीगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजाय सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कभू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसै थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम नितान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उतारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग कर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृदय बसै, नानक उदर साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कट ढीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते ता बख्याने। साध की उपमा तै गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची।

भाई शाह भाई गुरदास जी, इस वार दे विच गुरमत दे छे नियम दस रहे हैं कि गुरमत की है, गुरसिख कौन है।

निम्रता धारण करनी। गरीबी तो भाव किसे कंगाली या भुखमरी का नहीं लेना। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नू गरीबी आख्या गया। सेवा सिमरन परपकार करदिया होया भी मन विच हंकार ना आवे, मन विच किसे गल दा गर्व ना आवे, ए है निम्रता। भाई साहब कहिंदे हन पहला नियम गुरमत दा है निम्रता धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना। एका नारी जती है पर नारी ती भैन वखाने, वेख पराइयां चंगियां मामा भैणा तियां जाने। ऐसा गुरसिख का पवित्र जीवन है जो भाई साहब दस रहे।

इधर पाछा आप बख्शिश कर रहे हैं भाई। जदों तो असी अपनी शुद्ध बुद्ध संभाली ते गुरुदेव पिता जी ने एक साडे कोलो वचन लै लिया, ओ केड़ा वचन सी, आप इस तरह बख्शिश कर रहे हैं।

धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नु पवित्र रखना। तीसरा नियम पराई वस्तु पई है उसनु हाथ तक नहीं लाउना, किसे दी इमानत विच ख्यानत नहीं करनी। चौथा नियम ना किसे दी निंदा करनी है ना सुननी है। पंजवा नियम जो गुरु कहिंदा है उस दे कहे होए बचना ते चल के अपने जीवन नु रोशन करना, अपने जीवन नु टालना। हुण छेवा नियम भाई साहब दसदियां, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, क्योंकि गुरु नानक दे दर दा ए उपदेश है। किसे ने घर बार नहीं त्यागना, संसार नहीं त्यागना, ग्रस्त दा त्याग नहीं करना। हजूर कहिंदियां अमृत वेले नींद दा त्याग कर दे। अमृत वेले उठ, इशनान कर, ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु। ऐसे विच ही तेरा लोक सुखी ते परलोक सुहेला होवेगा। भाई साहब गुरदास जी कहिंदे हन के जिन्हां विच ए छिया छे नियम कटदे हन उस गुरमुख नूं सहज अवस्था प्राप्त हो गई। सहज अवस्था की है? तुरदियां फिरदियां बैठदियां कारोबार करदियां मन करके ईश्वर दे चरणां विच वसना। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। ओ मनुख सदा अकाल पुरख दी हजूरी विच वस रहा है जिदे अंदर ए छे नियम वस रहे हैं। छेवां नियम भाई साहब दसदे हन, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे।

फरीद जी कहंदे हन तेरे अंदर एडी निम्रता आ जावे कि जे कोई तेरे नाल बुरा भी कर रहा है तामी तू उसका पला लोचे आख्या मैनू मिलेगा की अगलिया तुकां विच दसदे हन।